मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: પીએમ સૂર્યઘર મફત વીજળી યોજના. જોડાવવા માટે રજીસ્ટર કરો pmsuryaghar.gov.in પર.
1: हेलो हाय नमस्कार, दिस इज आरजे अंजलि और आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर 90.4 FM. हम सुन रहे थे एक गधे की आत्मकथा जो लिखी है कृष्णचंद्र जी ने. पी क्यू रंगाचारी तमिलनाडु का रहने वाला था. संस्कृत बनारसी पंडितों की तरह बोलता था और अंग्रेजी ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसरों जैसी, हिंदी साहित्य सम्मेलन के जोशीले भाषणकर्ताओं सी और उर्दू मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जैसी. वह 10 भाषाएं जानता था और 10 और सीख रहा था. उसने अपना जीवन एक साधारण क्लर्क के रूप में शुरू किया था. आज वह डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रीज में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर विराजमान था. प्रत्येक मामले में मेन मेक निकालने में वह ऐसा सिद्धहस्त था कि उसके शासनकाल में हर फाइल 10 वर्ष तक विभिन्न दफ्तरों और मेज़ों के चक्कर लगाती थी और जब तक उसकी तरक्की न हो जाए फाइल भी आगे तरक्की नहीं कर सकती थी. अपने इसी कानूनी मीन मेक के कारण वह डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर पहुंचा था और अब ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने के स्वप्न देख रहा था. हो जाएगा. पी क्यू रंगाचारी जैसे व्यक्ति कभी नहीं रुक सकते. उनके दफ्तर की सारी फाइलें रुक जाए लेकिन वे स्वयं कभी नहीं रुक सकते. पी क्यू रंगाचारी ने बड़े ध्यान से और बड़े धैर्य से मेरा प्रार्थना पत्र पढ़ा. कागज़ पर पेंसिल से कुछ लिखता रहा. आखिर जब सब सुन चुका था तो उसने अपने मित्र ज्वाइंट सेक्रेटरी YZ सुब्रमण्यम को बुलाया जो उसी की तरह तमिलनाडु का रहने वाला था और 25 भाषाओं, 10 पूंजीपतियों और 2 मंत्रियों को बहुत अच्छी तरह जानता था. आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा जो लिखी है कृष्णचंद्र जी ने. कहीं जाइएगा नहीं, इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद. मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर.

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा जो लिखी है कृष्णचंद्र जी ने। पी क्यू रंगाचारी ने कहा, वाइजर सुनो, यह बड़ी कठिन समस्या है। क्या? वाइजर सुब्रमण्यम मेरी ओर बढ़ी, ध्यान से देखते हुए बोला, एक धोबी मर गया है और यह उसका गधा हमसे हर्जाना मांगता है। फिर रंगाचारी बोला, कानून की दृष्टि से एक गधा किसी विभाग में प्रार्थना पत्र नहीं दे सकता और हम उसके प्रार्थना पत्र का कोई नोटिस नहीं ले सकते, क्योंकि गधा इंसान नहीं है और अदालत इंसानों की बात सुनती है, गधों की नहीं। मैंने कहा, बात मेरी घास की नहीं है, आपकी बुद्धि की है। रामू की बीबी और बच्चे भूखे हैं। क्यों? अगर सरकार उस धोबी गार्ड की ठीक तरह से रक्षा करती तो आज वह यूं ना मरता। वाइजर सुब्रमण्यम ने कहा, हाँ पी क्यू, इस बात पर विचार करो। यूं सोचो कि यह प्रार्थना पत्र जिस पर रामू

की बीबी का अंगूठा लगवाया जा सकता है, स्वीकार किया जा सकता है। फिर पीक्यू बोला, फिर दूसरी बात पर विचार करो। मान लिया कि एक गधा एक धोबी के कुटुंब का सरपरस्त बन सकता है। हमने बड़े बड़े कुटुंबों में इनसे बड़े गधों को सरपरस्त बनते देखा है। यह तो मुझे पढ़ा लिखा गधा मालूम होता है, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या रामू धोबी मजदूर था? कदापि नहीं, YZ सुब्रमण्यम ने सिर हिलाकर कहा। मैंने कहा, धोबी अगर मजदूर नहीं तो क्या है? बेचारा सुबह से शाम तक 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम करता है, तब जाकर उसे 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा। कहीं जाइएगा नहीं, यहीं पर रहिए। एक ब्रेक के बाद हम यहीं पर मिलेंगे और इस बात को आगे बढ़ाएंगे। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

वेलकम अगेन, आप सुन रहे हैं एक गधे की आत्मकथा ऑन रेडियो पालमपुर 90.4 FM। क्या रामू धोबी मजदूर था? कदापि नहीं, वाइजर सुब्रमण्यम ने सिर हिलाकर कहा। मैंने कहा, धोबी अगर मजदूर नहीं तो क्या है? बेचारा सुबह से शाम तक 8 घंटे की बजाय 12 घंटे का काम करता है, तब जाकर उसे 2 वक्त

रोटी नसीब होती है। लेबर एक्ट की धारा 51 के अनुसार मजदूर वह है जो किसी कारखाने में काम करे। क्या तुम धोबी गार्ड को कारखाना कह सकते हो सुब्रमण्यम? कदापि नहीं रंगाचारी, यह धोबी तो मजदूर हो ही नहीं सकता। इसलिए न इसे हर्जाना मिल सकता है, न प्रोविडेंट फंड, न सहायता स्वरूप कुछ रुपया किसी खाते में से दिया जा सकता है, न कोई मुकदमा खड़ा हो सकता है। तो फिर? रंगाचारी सुब्रमण्यम का मुंह देखने लगा और सुब्रमण्यम रंगाचारी का, और मैं उन दोनों का। एकाएक उन दोनों के मन में एक ही विचार आया और वे प्रसन्नतावश उछल पड़े। मैं भी प्रसन्नता से उछल पड़ा कि अब बेचारे रामू धोबी की फैमिली का कुछ भला हो जाएगा। मगर एक बात विचार करने की है, रंगाचारी बोला, अगर यह धोबी मजदूर नहीं तो फिर कौन है? इसकी कानूनी हैसियत स्पष्ट होनी चाहिए, नहीं तो धोबी प्रतिदिन घाट पर मरते रहेंगे और हमारे लिए विपत्ति खड़ी करते रहेंगे। सुब्रमण्यम बोला, मेरे विचार से इस गधे का प्रार्थना पत्र लेकर एक फाइल चला देनी चाहिए। रंगाचारी ने मेरे हाथ से प्रार्थना पत्र ले लिया। मैंने उसके दोनों हाथ अपने दोनों कानों में लेकर कहा, धन्यवाद रंगाचारी महोदय, हजार बार लाख बार धन्यवाद। आपने एक गरीब धोबी के बीबी बच्चों को मरने से बचा लिया। मैं इस प्रार्थना पत्र का फैसला सुनने का पाऊ? रंगाचारी ने सुब्रमण्यम की ओर देखा, सुब्रमण्यम ने रंगाचारी की ओर देखा। आखिर रंगाचारी बोला, फाइल तो आज ही चलनी शुरू हो जाएगी। तीसरे दर्जे के क्लर्क से पहले पहले दर्जे के क्लर्क तक जाएगी, फिर हर मेज पर इसकी नोटिंग होगी। फर्स्ट क्लर्क से डिप्यूटी सुप्रीडेंट तक और डिप्यूटी सुप्रीडेंट से सुप्रीडेंट तक प्रत्येक व्यक्ति अपनी राय देगा। यह राय चलते चलते मेजों पर से गुजरती हुई मेरे पास आएगी। मैं डिप्टी सेक्रेटरी हूँ, मेरे पास से ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास जाएगी, ज्वाइंट सेक्रेटरी से फर्स्ट सेक्रेटरी के पास, फर्स्ट सेक्रेटरी से उसे डिप्टी कमिश्नर के पास ले जाया जाएगा। मगर समस्या बड़ी टेढ़ी है। आप सोच रहे होंगे कि क्या समस्या है, लेकिन इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, यहाँ पर जुड़े रहिए मेरे साथ आरजी अंजलि के साथ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

मगर समस्या बड़ी टेढ़ी है। प्रश्न रामु धोबी के मर जाने का इतना नहीं है, प्रश्न यह है कि धोबी मजदूर हो सकता है या नहीं। संभव है इस संबंध में कॉमर्स मिनिस्ट्री से निर्णय कराने की आवश्यकता पड़े। फिर यह प्रश्न भी है कि अगर धोबी मजदूर है तो मोची मजदूर क्यों नहीं, कुम्हार मजदूर क्यों नहीं। अगर रामू को हर्जाना मिलेगा तो दूसरे भी मांगेंगे। लाखों करोड़ों के लिए स्टेट बैंक कहां से हर्जाना लाएगा, इसके लिए फिनांस डिपार्टमेंट से भी पूछना पड़ेगा। संभव है फिनांस डिपार्टमेंट इस मूल प्रश्न को प्रधानमंत्री के सामने रखे और प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में इस प्रश्न को रखे। संभव है इसी प्रश्न पर हमारे विधान की किसी धारा में कोई परिवर्तन भी हो जाए। रंगाचारी ने अपनी उंगलियों पर गिनते हुए मुझसे कहा, मेरे विचार में अगर तुम 10 साल के बाद आओ तो उस समय तक इस फाइल का कोई ना कोई फैसला जरूर हो जाएगा। तब तक रामू के बीबी बच्चे क्या करें? रंगाचारी ने कहा, हम विवश है, कानून के हाथों बिल्कुल विवश है। यो हमारी पूरी पूरी सहानुभूति तुम्हारे साथ है। सुब्रमण्यम बोला, मैं समझता हूँ रंगाचारी, समस्या वास्तव में यह नहीं है कि धोबी मजदूर है या नहीं, वास्तविक समस्या यह है कि रामू को किसने मारा। एक मगरमच्छ ने, सुब्रमण्यम ने प्रसन्नता से चिल्लाकर कहा, तो फिर यह समस्या हमारे विभाग से कोई संबंध नहीं रखती, इसका सीधा संबंध मछलियों के विभाग से है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज।

कृपया आप मछलियों के विभाग में जाइए। उनका संबंध हर प्रकार की मछलियों से है, जिनमें मगरमच्छ भी शामिल है। रंगाचारी ने सुब्रमण्यम के हाथ पर हाथ मारकर कहा, वाह क्या बात निकाली है, क्यों ना हो भाई, इसलिए तो मैं अभी तक डिप्टी सेक्रेटरी हूँ और तुम ज्वाइंट सेक्रेटरी हो। रंगाचारी ने ईर्ष्या और द्वेष के मिले जुले भाव से कहा। मैं चुपके से प्रार्थना पत्र हाथ में लिए बाहर निकल गया। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा। कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो पालमपुर के साथ।

गधा पहुंच गया मछलियों के विभाग में। वहां क्या होता है वो भी सुन लीजिए। मछलियों के विभाग में मछली मार्केट जैसा ही कोलाहल था। कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अब तक मैं दफ्तरी कार्यवाही का काफी अभ्यस्त हो चुका था, इसलिए मैंने पहले काउंटर की पहली खिड़की से शुरू किया। पहले क्लर्क ने कहा, मैं तो केवल मछलियों के अंडों की फाइलें लेता हूँ, आप आगे जाइए। दूसरे क्लर्क ने कहा, मेरे पास तो केवल मछलियों से संबंधित जानकारी की फाइलें हैं, वह भी केवल 3 प्रकार की मछलियों के संबंध में, रोहू, साइमन और पामफ्रेट। आपने क्या नाम बताया? रामू, मैंने धीमे से दोहराया। क्लर्क ने इनकार में सिर हिलाकर कहा, इस नाम की कोई मछली हमारे पास नहीं है, आगे जाइए। तीसरे क्लर्क से मैंने छूटते ही कहा, एक मगरमच्छ है। तीसरा क्लर्क बोला, शार्क मछली के तेल के बारे में या जापानी ट्रॉलर को किराए पर लेने के बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, वरना आगे जाइए। चौथे क्लर्क तक पहुंचते पहुंचते मेरे क्रोध का पारा बहुत चढ़ चुका था। यहाँ एक बूढ़ा मरियल सा क्लर्क अपनी नाक की चोंच लटकाई एक बड़ा सा रजिस्टर खोली ऊंघ रहा था। मैंने कहा, सुनो। और भाई सुनना पड़ेगा, बात यह है कि धोबी को एक मगरमच्छ ने खा लिया है। बूढ़े क्लर्क ने अपने कानों पर हाथ रखकर पूछा, आ? क्या कहते हो? मैंने चिल्लाकर कहा, एक धोबी को एक मगरमच्छ ने खा लिया है। बूढ़े क्लर्क के मूर्खतापूर्ण चेहरे पर एक विचित्र सी मुस्कुराहट आई और बोला, एक धोबी ने एक मछली को खा लिया है? तो क्या हुआ? बहुत से धोबी मछली खाते हैं, न खाए तो हमारा यह डिपार्टमेंट कैसे चले? मैंने कहा, धोबी ने नहीं, मगरमच्छ ने धोबी को खा लिया है। वह बोला, धोबी ने नहीं, मगरमच्छ ने मछली को खाया है? अच्छा अच्छा, तो इसमें शिकायत की क्या बात है? बहुत से मगरमच्छ मछलियां खाते हैं। मैंने जोर से चिल्ला कर कहा, सुनो, मछली नहीं मगरमच्छ। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा। कहीं पर जाइएगा नहीं, अभी बात बाकी है। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

वेलकम अगेन। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर आरजे अंजलि के साथ एक गधे की आत्मकथा जो लिखी है कृष्णचंद्र जी ने। वह बोला, अच्छा एक मगरमच्छ। मैंने उसे समझाते हुए कहा, और एक धोबी, याद रखो एक धोबी एक मगरमच्छ। वह बोला, एक धोबी एक मगरमच्छ, आगे चलो। मैंने कहा, वह धोबी घाट पर कपड़े धोता था। वह बोला, अच्छे कपड़े धोता था। मैंने चिल्लाकर कहा, अच्छे धोता था या बुरे धोता था, तुम्हें इससे क्या। वह बोला, मेरा धोबी बहुत बुरे कपड़े धोता है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे धोबी को। मैंने सटपटाकर कहा, तुम पूरी बात नहीं सुनोगी। वह बोला, अच्छा सुनाओ, एक धोबी

हेलो हाय नमस्कार वेलकम अगेन। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर आरजे अंजलि के साथ एक गति की आत्मकथा। तो आगे बढ़ते हैं। फरमाइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने दिल में सोचा कहीं यह भी बूढ़े क्लर्क की तरह गड़बड़ा न जाए, इसलिए बहुत धीरे धीरे पूरा वृतांत सुनाऊंगा। मैंने कहा, सुनिए एक मगरमच्छ है। एंग्लो इंडियन महोदय की आंखें चमक उठी। बोला, हाँ किधर है? मैंने कहा, यमुना घाट पर। वह बोला, यमुना पर तो बहुत से घाट है मगर कहाँ है? एंग्लो इंडियन महोदय सब कुछ नोट करता जाता था। मैंने सोचा अब मुझे अपने मतलब का व्यक्ति मिल गया। मन ही मन मैंने भगवान के गुण गाए। मैंने कहा, कृष्ण नगर के पास रेल के पुल के नीचे। एंग्लो इंडियन ने नोट करते हुए पूछा, कितना लंबा चौड़ा है? क्या घाट? घाट नहीं मगरमच्छ, एंग्लो इंडियन ने बोला। मैंने कहा, मैंने देखा तो नहीं मगर लोग कहते हैं 30 फुट से कम नहीं था। है? एंग्लो इंडियन की आंखें चमक उठी। अब तो उसके गाल भी चमक रहे थे। 30 फुट? वाह वाह, क्या तुम मुझे उस स्थान पर ले जा सकते हो? हाँ ले जा सकता हूँ, हम साथ में अपनी राइफल ले चलेंगे, वह प्रोग्राम बनाते हुए बोला। राइफल किस लिए? मगरमच्छ के शिकार के लिए। एंग्लो इंडियन मेरी ओर आश्चर्य से देख कर बोला, तुम मगरमच्छ के शिकार के लिए आए थे ना? मैंने कहा, नहीं, बात यह है कि उस मगरमच्छ ने एक धोबी को खा लिया है, उसके बीबी बच्चों की सहायता के लिए मैं यहाँ। ओ, एंग्लो इंडियन का दिल बुझ गया, उसकी आंखों की चमक भी बुझ गई। बिल्कुल कारोबारी और दफ्तरी स्वर में बोला, मैं मगरमच्छ का शिकार तो कर सकता हूँ मगर रामू के लिए कुछ नहीं कर सकता। सॉरी, हमारे विभाग से धोबियों का कोई संबंध नहीं। मैंने बिल्कुल तंग आकर कहा, तुम्हें कहाँ जाऊँ? तुम्हारे विभाग से धोबियों का कोई संबंध नहीं तो किसी दूसरे विभाग का मगरमच्छों से कोई संबंध नहीं तो फिर उसका संबंध किससे है? यह कैसे पता चल सकता है? आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गति की आत्मकथा। कहीं जाइएगा नहीं, आरजे अंजलि के साथ जुड़े रहिए। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

एंग्लो इंडियन ने बड़े ध्यान से और सहानुभूति से मेरी ओर देखा और पूछा, क्या तुम मरने वाले की संबंधी हो? नहीं, मैं तो बस उसका गधा हूँ। फिर भी इतनी सहानुभूति जताती हो? एंग्लो इंडियन मेरी ओर चौंकन ना होकर देखने लगा। देखो, मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ। आजकल के जमाने में किसी के प्रति इतनी सहानुभूति रखना खतरे से खाली नहीं है। मैंने कहा, तुम मुझे यह मशवरा न दो, यह बताओ कि मेरी यह प्रार्थना कौन सुनेगा? एंग्लो इंडियन सोच में पड़ गया और पेंसिल चबाने लगा। पेंसिल चबाते चबाते बोला, मामला मगरमच्छ का है। मगरमच्छ का अदालत से कोई संबंध नहीं, वरना तुम इस कत्ल के सिलसिले में अदालत में जा सकते थे। मगरमच्छ का संबंध चिड़ियाघर से अवश्य है। तुम चिड़ियाघर जा सकते हो, मगर चिड़ियाघर वाले क्या करेंगे? उनके यहाँ पहले से मगरमच्छ मौजूद है। फिर चिड़ियाघर वालों का धोबी से क्या संबंध, क्योंकि चिड़ियाघर के जानवर कपड़े तो पहनते नहीं। हाँ, एकाएक वह प्रसन्नता से उछल पड़ा। अब कि मैंने उसके चेहरे पर वही प्रफुल्लता देखी जो कुछ समय पूर्व मैं रंगाचारी और सुब्रमण्यम के चेहरे पर देख आया था। वह बोला, एक तरकीब समझ में आई है। क्या? सुनो, धोबी का संबंध साबुन से है और साबुन के आयात निर्यात का संबंध कॉमर्स डिपार्टमेंट से है। फिर धोबी का संबंध कपड़ों से है और कपड़ों का संबंध फिर कॉमर्स डिपार्टमेंट से है। देखो, तुम सीधे कॉमर्स मिनिस्टर के पास चले जाओ, उसके सामने रामू धोबी की पूरी विपदा रख दो। अगर वह चाहता होगा कि धोबी कपड़े धो धो कर फाड़ते रहे और इस प्रकार लोग नए नए कपड़े पहनने पर विवश होते रहे,

वह इस संबंध में अवश्य तुम्हारी सहायता करेगा। आप सुन रहे थे एक गधे की आत्मकथा। इसके आगे की बात हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता साहू जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, ये प्रकृति का
3: नए साल में खुशी मनाए,
4: हिल मिल कर सब नाचे गाए, नए साल में खुशी मनाए।
5: उत्सव समाप्त हो गया था। वल्लरी, यमन और उनके पिताजी घर वापस जा रहे थे। बच्चे सोच रहे थे, कितना सुंदर है हमारा देश, तरह तरह के त्योहार, भाषाएं, संस्कृतियां और लोग। सचमुच विविधताओं का संगम है हमारा भारत।
0: अभी आपने सुनी कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित ये नाट्य प्रस्तुति। अब आपके लिए कुछ करने को। पूर्वोत्तर भारत में मनाए जाने वाले अन्य जनजातीय त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। ये पता कीजिए कि सांगकेन मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, और साथ ही साथ सांगकेन त्योहार पर चावल से बने पकवान एवं मिठाइयों के नाम भी मालूम कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज और राजेश काम्बोज, बाल कलाकार वान्या और सोहम, आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण अरशद अहमद। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सांगकेन। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, और अगला कार्यक्रम है तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर।
2: देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत ये गीत है, जिसे भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान आम जनता द्वारा जलूसों में गाया जाता था। इस गीत के द्वारा देश के करोड़ों लोगों को आजादी की लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरणा मिली।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। जी हाँ श्रोताओ, ये गीत आज भी हमें जीवन के प्रति एक नए उत्साह और आत्मविश्वास से भर देता है।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल।
1: ये कार्यक्रम बच्चों को सुंदर गीत और संगीत के माध्यम से रोचक गतिविधि कराता है। कार्यक्रम में बच्चों को व्यायाम के महत्व से भी खेल खेल में परिचित कराया गया है और विनम्र व्यवहार का महत्व भी समझाया गया है।
2: क्लैप एंड स्माइल।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभरता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

अक्का पालनपुरी नी ओळख एटले ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतो रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन.

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

अक्का पालनपुरी ने ओळखले ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतो रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडिओ पालनपुर कम्युनिटी रेडिओ स्टेशन.

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

हेलो हाय नमस्कार, दिस इज़ आरजे अंजलि और आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर 90.4 FM। हम सुन रहे थे एक गधे की आत्मकथा जो लिखी है कृष्णचंद्र जी ने। पी क्यू रंगाचारी तमिलनाडु का रहने वाला था। संस्कृत बनारसी पंडितों की तरह बोलता था और अंग्रेजी ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसरों जैसी, हिंदी साहित्य सम्मेलन के जोशीले भाषणकर्ताओं सी और उर्दू मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जैसी। वह 10 भाषाएं जानता था और 10 और सीख रहा था। उसने अपना जीवन एक साधारण क्लर्क के रूप में शुरू किया था। आज वह डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रीज में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर विराजमान था। प्रत्येक मामले में मेन मेक निकालने में वह ऐसा सिद्धहस्त था कि उसके शासनकाल में हर फाइल 10 वर्ष तक विभिन्न दफ्तरों और मेज़ों के चक्कर लगाती थी और जब तक उसकी तरक्की न हो जाए फाइल भी आगे तरक्की नहीं कर सकती थी। अपने इसी कानूनी मीन मेक के कारण वह डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर पहुंचा था और अब ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने के स्वप्न देख रहा था। हो जाएगा, पी क्यू रंगाचारी जैसे व्यक्ति कभी नहीं रुक सकते। उनके दफ्तर की सारी फाइलें रुक जाए लेकिन वे स्वयं कभी नहीं रुक सकते। पी क्यू रंगाचारी ने बड़े ध्यान से और बड़े धैर्य से मेरा प्रार्थना पत्र पढ़ा। कागज पर पेंसिल से कुछ लिखता रहा। आखिर जब तब सुन चुका था तो उसने अपने मित्र ज्वाइंट सेक्रेटरी YZ सुब्रमण्यम को बुलाया, जो उसी की तरह तमिलनाडु का रहने वाला था और 25 भाषाओं, 10 पूंजीपतियों और 2 मंत्रियों को बहुत अच्छी तरह जानता था। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा जो लिखी है कृष्णचंद्र जी ने। कहीं जाइएगा नहीं, इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा जो लिखी है कृष्णचंद्र जी ने। पीके रंगाचारी ने कहा, वाइजर सुनो, यह बड़ी कठिन समस्या है। क्या? वाइजर सुब्रमण्यम मेरी ओर बढ़े, ध्यान से देखते हुए बोला, एक धोबी मर गया है और यह उसका गधा हमसे हर्जाना मांगता है। फिर रंगाचारी बोला, कानून की दृष्टि से एक गधा किसी विभाग में प्रार्थना पत्र नहीं दे सकता और हम उसके प्रार्थना पत्र का कोई नोटिस नहीं ले सकते, क्योंकि गधा इंसान नहीं है और अदालत इंसानों की बात सुनती है, गधों की नहीं। मैंने कहा, बात मेरी घास की नहीं है, आपकी बुद्धि की है। रामू की बीबी और बच्चे भूखे हैं। क्यों? अगर सरकार उस धोबी गार्ड की ठीक तरह से रक्षा करती तो आज वह यूं ना मरता। वाइजर सुब्रमण्यम ने कहा, हाँ पी क्यू, इस बात पर विचार करो। यूं सोचो कि यह प्रार्थना पत्र जिस पर रामू की बीबी का अंगूठा लगवाया जा सकता है, स्वीकार किया जा सकता है। फिर पी क्यू बोला, फिर दूसरी बात पर विचार करो। मान लिया कि एक गधा एक धोबी के कुटुंब का सरपरस्त बन सकता है। हमने बड़े बड़े कुटुंबों में इनसे बड़े गधों को सरपरस्त बनते देखा है। यह तो मुझे पढ़ा लिखा गधा मालूम होता है, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या रामू धोबी मजदूर था? कदापि नहीं। वाइजेड सुब्रमण्यम ने सिर हिलाकर कहा। मैंने कहा, धोबी अगर मजदूर नहीं तो क्या है? बेचारा सुबह से शाम तक 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम करता है, तब जाकर उसे 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा। कहीं जाइएगा नहीं, यहीं पर रहिए। एक ब्रेक के बाद हम यहीं पर मिलेंगे और इस बात को आगे बढ़ाएंगे। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

0: वेलकम अगेन, आप सुन रहे हैं एक गधे की आत्मकथा ऑन रेडियो पालमपुर 90.4 FM। क्या रामू धोबी मजदूर था? कदापि नहीं, वाइजर सुब्रमण्यम ने सिर हिलाकर कहा। मैंने कहा, धोबी अगर मजदूर नहीं तो क्या है? बेचारा सुबह से शाम तक 8 घंटे की बजाय 12 घंटे का काम करता है, तब जाकर उसे 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। लेबर एक्ट की धारा 51 के अनुसार मजदूर वह है जो किसी कारखाने में काम करे। क्या तुम धोबी गार्ड को कारखाना कह सकते हो सुब्रमण्यम? कदापि नहीं रंगाचारी, यह धोबी तो मजदूर हो ही नहीं सकता, इसलिए न इसे हर्जाना मिल सकता है, न प्रोविडेंट फंड, न सहायता स्वरूप कुछ रुपया किसी खाते में से दिया जा सकता है, न कोई मुकदमा खड़ा हो सकता है। तो फिर? रंगाचारी सुब्रमण्यम का मुंह देखने लगा और सुब्रमण्यम रंगाचारी का, और मैं उन दोनों का। एकाएक उन दोनों के मन में एक ही विचार आया और वे प्रसन्नतावश उछल पड़े। मैं भी प्रसन्नता से उछल पड़ा कि अब बेचारे रामू धोबी की फैमिली का कुछ भला हो जाएगा। मगर एक बात विचार करने की है, रंगाचारी बोला, अगर यह धोबी मजदूर नहीं तो फिर कौन है? इसकी कानूनी हैसियत स्पष्ट होनी चाहिए, नहीं तो धोबी प्रतिदिन घाट पर मरते रहेंगे और हमारे लिए विपत्ति खड़ी करते रहेंगे। सुब्रमण्यम बोला, मेरे विचार से इस गधे का प्रार्थना पत्र लेकर एक फाइल चला देनी चाहिए। रंगाचारी ने मेरे हाथ से प्रार्थना पत्र ले लिया। मैंने उसके दोनों हाथ अपने दोनों कानों में लेकर कहा, धन्यवाद रंगाचारी महोदय, 1000 बार लाख बार धन्यवाद। आपने एक गरीब धोबी के बीबी बच्चों को मरने से बचा लिया। मैं इस प्रार्थना पत्र का फैसला सुनने का पाऊ? रंगाचारी ने सुब्रमण्यम की ओर देखा, सुब्रमण्यम ने रंगाचारी की ओर देखा। आखिर रंगाचारी बोला, फाइल तो आज ही चलनी शुरू हो जाएगी। तीसरे दर्जे के क्लर्क से पहले पहले दर्जे के क्लर्क तक जाएगी, फिर हर मेज पर इसकी नोटिंग होगी, फर्स्ट क्लर्क से डिप्यूटी सुप्रिटेंडेंट तक और डिप्यूटी सुप्रिटेंडेंट से सुप्रिटेंडेंट तक प्रत्येक व्यक्ति अपनी राय देगा। यह राय चलते चलते मेजों पर से गुजरती हुई मेरे पास आएगी। मैं डिप्टी सेक्रेटरी हूँ, मेरे पास से ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास जाएगी, ज्वाइंट सेक्रेटरी से फर्स्ट सेक्रेटरी के पास, फर्स्ट सेक्रेटरी से उसे डिप्टी कमिश्नर के पास ले जाया जाएगा। मगर समस्या बड़ी टेढ़ी है। आप सोच रहे होंगे कि क्या समस्या है, लेकिन इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, यहाँ पर जुड़े रहिए मेरे साथ आरजी अंजलि के साथ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।
1: I hate you.

मगर समस्या बड़ी टेढ़ी है। प्रश्न रामू धोबी के मर जाने का इतना नहीं है, प्रश्न यह है कि धोबी मजदूर हो सकता है या नहीं। संभव है इस संबंध में कॉमर्स मिनिस्ट्री से निर्णय कराने की आवश्यकता पड़े। फिर यह प्रश्न भी है कि अगर धोबी मजदूर है तो मोची मजदूर क्यों नहीं, कुम्हार मजदूर क्यों नहीं। अगर रामू को हर्जाना मिलेगा तो दूसरे भी मांगेंगे। लाखों करोड़ों के लिए स्टेट बैंक कहाँ से हर्जाना लाएगा, इसके लिए फिनांस डिपार्टमेंट से भी पूछना पड़ेगा। संभव है फिनांस डिपार्टमेंट इस मूल प्रश्न को प्रधानमंत्री के सामने रखे और प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में इस प्रश्न को रखे। संभव है इसी प्रश्न पर हमारे विधान की किसी धारा में कोई परिवर्तन भी हो जाए। रंगाचारी ने अपनी उंगलियों पर गिनते हुए मुझसे कहा, मेरे विचार में अगर तुम 10 साल के बाद आओ तो उस समय तक इस फाइल का कोई ना कोई फैसला जरूर हो जाएगा। तब तक रामू के बीबी बच्चे क्या करे। रंगाचारी ने कहा, हम विवश है, कानून के हाथों बिल्कुल विवश है। यो हमारी पूरी पूरी सहानुभूति तुम्हारे साथ है। सुब्रमण्यम बोला, मैं समझता हूँ रंगाचारी, समस्या वास्तव में यह नहीं है कि दो

मजदूर है या नहीं। वास्तविक समस्या यह है कि रामू को किसने मारा। एक मगरमच्छ ने, सुब्रमण्यम ने प्रसन्नता से चिल्लाकर कहा। तो फिर यह समस्या हमारे विभाग से कोई संबंध नहीं रखती। इसका सीधा संबंध मछलियों के विभाग से है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। कृपया आप मछलियों के विभाग में जाइए, उनका संबंध हर प्रकार की मछलियों से है जिनमें मगरमच्छ भी शामिल है। रंगाचारी ने सुब्रमण्यम के हाथ पर हाथ मारकर कहा, वाह क्या बात निकाली है, क्यों ना हो भाई, इसलिए तो मैं अभी तक डिप्टी सेक्रेटरी हूँ और तुम ज्वाइंट सेक्रेटरी हो। रंगाचारी ने ईर्ष्या और द्वेष के मिले जुले भाव से कहा। मैं चुपके से प्रार्थना पत्र हाथ में लिए बाहर निकल गया। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा। कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो पालमपुर के साथ।

अब गधा पहुंच गया मछलियों के विभाग में। वहां क्या होता है वो भी सुन लीजिए। मछलियों के विभाग में मछली मार्केट जैसा ही कोलाहल था। कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अब तक मैं दफ्तरी कार्यवाही का काफी अभ्यस्त हो चुका था, इसलिए मैंने पहले काउंटर की पहली खिड़की से शुरू किया। पहले क्लर्क ने कहा, मैं तो केवल मछलियों के अंडों की फाइलें लेता हूँ, आप आगे जाइए। दूसरे क्लर्क ने कहा, मेरे पास तो केवल मछलियों से संबंधित जानकारी की फाइलें हैं, वह भी केवल 3 प्रकार की मछलियों के संबंध में, रोहू, साइमन और पामफ्रेट। आपने क्या नाम बताया? रामू, मैंने धीमे से दोहराया। क्लर्क ने इनकार में सिर हिलाकर कहा, इस नाम की कोई मछली हमारे पास नहीं है, आगे जाइए। तीसरे क्लर्क से मैंने छूटते ही कहा, एक मगरमच्छ है। तीसरा क्लर्क बोला, शार्क मछली के तेल के बारे में या जापानी ट्रॉलर

0: किराए पर लेने के बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, वरना आगे जाइए। चौथे क्लर्क तक पहुंचते पहुंचते मेरे क्रोध का पारा बहुत चढ़ चुका था। यहाँ एक बूढ़ा मरियल सा क्लर्क अपनी नाक की चोंच लटकाई एक बड़ा सा रजिस्टर खोली ऊंघ रहा था। मैंने कहा, सुनो।
1: और भाई सुनना पड़ेगा। बात यह है कि धोबी को एक मगरमच्छ ने खा लिया है।
0: बूढ़े क्लर्क ने अपने कानों पर हाथ रखकर पूछा,
2: आ? क्या कहते हो?
0: मैंने चिल्लाकर कहा,
1: एक धोबी को एक मगरमच्छ ने खा लिया है।
0: बूढ़े क्लर्क के मूर्खतापूर्ण चेहरे पर एक विचित्र सी मुस्कुराहट आई और बोला,
2: एक धोबी ने एक मछली को खा लिया है? तो क्या हुआ? बहुत से धोबी मछली खाते हैं। न खाए तो हमारा यह डिपार्टमेंट कैसे चले?
0: मैंने कहा,
1: धोबी ने नहीं, मगरमच्छ ने धोबी को खा लिया है।
0: वह बोला,
2: धोबी ने नहीं, मगरमच्छ ने मछली को खाया है।
1: अच्छा अच्छा, तो इसमें शिकायत की क्या बात है? बहुत से मगरमच्छ मछलियां खाते हैं।
0: मैंने जोर से चिल्लाकर कहा,
1: सुनो, मछली नहीं मगरमच्छ।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा। कहीं पर जाइएगा नहीं, अभी बात बाकी है। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

0: वेलकम अगेन, आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर आरजे अंजलि के साथ एक गधे की आत्मकथा जो लिखी है कृष्णचंद्र जी ने। वह बोला,
1: अच्छा एक मगरमच्छ।
0: मैंने उसे समझाते हुए कहा,
1: और एक धोबी, याद रखो एक धोबी एक मगरमच्छ।
0: वह बोला,
1: एक धोबी एक मगरमच्छ, आगे चलो।
0: मैंने कहा,
1: वह धोबी घाट पर कपड़े धोता था।
0: वह बोला,
1: अच्छे कपड़े धोता था।
0: मैंने चिल्लाकर कहा,
1: अच्छे धोता था या बुरे धोता था, तुम्हें इससे क्या?
0: वह बोला,
1: मेरा धोबी बहुत बुरे कपड़े धोता है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारा

वाले धोबी को, मैंने सटपटा कर कहा। तुम पूरी बात नहीं सुनोगी, वो बोला। अच्छा सुनाओ। एक धोबी एक मगरमच्छ, वह धोबी घाट पर कपड़े धोता था। फिर मैंने कहा, इतने में एक मगरमच्छ आया, उसने धोबी की टांग पकड़ी। क्या पकड़ी? जरा ऊंचा बोलो, मैं कम सुनता हूँ, वह बोला। टांग टांग, मैंने चिल्लाकर कहा। मुर्गी की? क्लर्क खुशी से चिल्लाया, मुर्गी की नहीं, धोबी की टांग। धोबी की टांग मैंने कभी नहीं खाई, बूढ़े क्लर्क ने दुख प्रकट करते हुए कहा। कैसी होती है? मैंने बिल्कुल झल्ला कर कहा, मैंने धोबी की टांग नहीं खाई, मगर मच्छ आया जब बेचारा धोबी कपड़े धो रहा था, वो पकड़कर खा गया, समझे? हाँ हाँ अब समझ गया, क्लर्क ने सिर हिलाकर कहा। धोबी कपड़े धोता था, इतने में एक मगरमच्छ आया और धोबी के कपड़े खा गया। मैंने उसकी ओर बड़े क्रोध से देखा और अगली खिड़की की ओर बढ़ गया। यहाँ पर एक अधेड़ आयु का एंग्लो इंडियन अपने गंजे सिर पर नीली नाड़ियों का उभरा हुआ जाल लपेटे बैठा था। उसकी नाक से मालूम होता था कि समय भी थोड़ी सी पिए हुए है। बड़ी शिष्टता पूर्वक मुझे मिला, कहने लगा, फरमाइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गति की आत्मकथा। कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए हमारे साथ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

हेलो हाय, नमस्कार, वेलकम अगेन। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर आरजे अंजलि के साथ एक गति की आत्मकथा। तो आगे बढ़ते हैं। फरमाइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने दिल में सोचा, कहीं यह भी बूढ़े क्लर्क की तरह गड़बड़ा न जाए, इसलिए बहुत धीरे धीरे पूरा वृतांत सुनाऊंगा। मैंने कहा, सुनिए, एक मगरमच्छ है। एंग्लो इंडियन महोदय की आंखें चमक उठी। बोला, हाँ, किधर है? मैंने कहा, यमुना घाट पर। वह बोला, यमुना पर तो बहुत से घाट है, मगर कहाँ है? एंग्लो इंडियन महोदय सब कुछ नोट करता जाता था। मैंने सोचा, अब मुझे अपने मतलब का व्यक्ति मिल गया। मन ही मन मैंने भगवान के गुण गाए। मैंने कहा, कृष्ण नगर के पास रेल के पुल के नीचे। एंग्लो इंडियन ने नोट करते हुए पूछा, कितना लंबा चौड़ा है? क्या घाट? घाट नहीं, मगरमच्छ, एंग्लो इंडियन ने बोला। मैंने कहा, मैंने देखा तो नहीं, मगर लोग कहते हैं 30 फुट से कम नहीं था। है? एंग्लो इंडियन की आंखें चमक उठी। अब तो उसके गाल भी चमक रहे थे। 30 फुट? वाह वाह, क्या तुम मुझे उस स्थान पर ले जा सकते हो? हाँ, ले जा सकता हूँ, हम साथ में अपनी राइफल ले चलेंगे, वह प्रोग्राम बनाते हुए बोला। राइफल किस लिए? मगरमच्छ के शिकार के लिए। एंग्लो इंडियन मेरी ओर आश्चर्य से देख कर बोला, तुम मगरमच्छ के शिकार के लिए आए थे ना? मैंने कहा, नहीं, बात यह है कि उस मगरमच्छ ने एक धोबी को खा लिया है, उसके बीबी बच्चों की सहायता के लिए मैं यहाँ। ओ, एंग्लो इंडियन का दिल बुझ गया, उसकी आंखों की चमक भी बुझ गई। बिल्कुल कारोबारी और दफ्तरी स्वर में बोला, मैं मगरमच्छ का शिकार तो कर सकता हूँ, मगर रामू के लिए कुछ नहीं कर सकता। सॉरी, हमारे विभाग से धोबियों का कोई संबंध नहीं। मैंने बिल्कुल तंग आकर कहा, तुम्हें कहाँ जाऊँ? तुम्हारे विभाग से धोबियों का कोई संबंध नहीं, तो किसी दूसरे विभाग का मगरमच्छों से कोई संबंध नहीं, तो फिर उसका संबंध किससे है? यह कैसे पता चल सकता है? आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गति की आत्मकथा। कहीं जाइएगा नहीं, आरजे अंजलि के साथ जुड़े रहिए। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

एंग्लो इंडियन ने बड़े ध्यान से और सहानुभूति से मेरी ओर देखा और पूछा, क्या तुम मरने वाले की संबंधी हो? नहीं, मैं तो बस उसका गधा हूँ। फिर भी इतनी सहानुभूति जताते हो? एंग्लो इंडियन मेरी ओर चौंकन ना होकर देखने लगा। देखो, मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ। आजकल के जमाने में किसी के प्रति इतनी सहानुभूति रखना खतरे से खाली नहीं है। मैंने कहा, तुम मुझे यह मशवरा न दो, यह बताओ कि मेरी यह प्रार्थना कौन सुनेगा? एंग्लो इंडियन सोच में पड़ गया और पेंसिल चबाने लगा। पेंसिल चबाते चबाते बोला, मामला मगरमच्छ का है। मगरमच्छ का अदालत से कोई संबंध नहीं, वरना तुम इस कत्ल के सिलसिले में अदालत में जा सकते थे। मगरमच्छ का संबंध चिड़ियाघर से अवश्य है। तुम चिड़ियाघर जा सकते हो, मगर चिड़ियाघर वाले क्या करेंगे? उनके यहाँ पहले से मगरमच्छ मौजूद है। फिर चिड़ियाघर वालों का धोबी से क्या संबंध, क्योंकि चिड़ियाघर के जानवर कपड़े तो पहनते नहीं। हाँ, एकाएक वह प्रसन्नता से उछल पड़ा। अब के मैंने उसके चेहरे पर वही प्रफुल्लता देखी जो कुछ समय पूर्व मैं रंगाचारी और सुब्रमण्यम के चेहरे पर देख आया था। वह बोला, एक तरकीब समझ में आई है। क्या? सुनो, धोबी का संबंध साबुन से है और साबुन के आयात निर्यात का संबंध कॉमर्स डिपार्टमेंट से है। फिर धोबी का संबंध कपड़ों से है और कपड़ों का संबंध फिर कॉमर्स डिपार्टमेंट से है। देखो, तुम सीधे कॉमर्स मिनिस्टर के पास चले जाओ, उसके सामने रामू धोबी की पूरी विपदा रख दो। अगर वह चाहता होगा कि धोबी कपड़े धो धो कर फाड़ते रहे और इस प्रकार लोग नए नए कपड़े पहनने पर विवश होते रहे, तो वह इस संबंध में अवश्य तुम्हारी सहायता करेगा। आप सुन रहे थे एक गधे की आत्मकथा। इसके आगे की बात हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: बुरी नहीं थी इश्क की मेरे, बस तेरे जैसे कुछ किरदार धोखेबाज निकले।
1: परम दिवसे पाछो ए भाई आवशे, आ वात वासंती ना मन मा एकदम गुमराई रही हती। ते दिवसे

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

पक्का पालनपुरी नी ओळख એટલે ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतो रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।